फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल.

0: taken from the film Guest in London, Ash King. Dil Mera, Dil Mera, Dil Mera. इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज ट्यूसडे द 6th ऑफ अक्टूबर की सुबह शबनम साही के साथ. 07925-700-272 द नंबर टू व्हाट्सएप मी ऑन. रहिएगा मेरे साथ पूरे 12 बजे तक. गुड मॉर्निंग
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी.
2: हेलो यूके वालों, बिग बॉस इज बैक और इस बार घर वालों को मिलेगा एक नहीं टू चांस. बिग बॉस ओनली ऑन कलर्स.
3: वॉच बिग बॉस 20 टुनाइट एट 9:30 PM ओनली ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार.
4: The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk.
0: सनराइज रेडियो पर इस घंटे का हमारा हिट ऑफ द आवर टेकन फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ दृश्यम 3 द कंक्लूजन. लकी अली ऑन द वोकल्स मुस्कुरा दो. बिफोर आई प्ले यू दैट, यू नो द स्क्रीन राइटर आमिल कियान खान, ही इज शेपिंग अप टू बी क्वाइट अ रॉक स्टार अमंग स्क्रीन राइटर्स. ही इज क्लियरली पार्ट ऑफ द न्यू टैलेंट दैट इज नाउ टेकिंग ओवर बॉलीवुड स्लोली, राइट? एंड ऑल्दो ही सेज दैट, यू नो, हाउ डू यू सरप्राइज पीपल फॉर द थर्ड टाइम राउंड, दैट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस. हाउ डू यू पुट समथिंग न्यू एंड येट मेंटेन द DNA of Drishyam, maintain all the elements that people have loved. I don't know. I have to say, I don't think it's the strongest one of the three screenplays. That's my personal opinion. Drishyam 1 and 2 were far superior. I mean, 3, as even Steve pointed out, is just more of the same. Nonetheless, मुझे ये भी लग रहा था ना कि अगर आप सोचें, Vijay Salgaonkar is this man who's already been accused of murder. The entire city and the police, they're already looking at him and his family with suspicion. But, of course, he's set free. Why? Because they can't gather enough evidence, nor can they work out how he may have committed the crime, right? ऐसा इंसान, why would he continue to live in the same city? मुझे तो ये नहीं समझ आता. पता है क्या होना चाहिए था पार्ट 3 में, कि विजय सलगांवकर उनकी फैमिली गोवा को छाड़ के दूर कहीं किसी दूसरे स्टेट में जाके बसे हैं. वहां पर एक दिन गाड़ी चलाते चलाते perhaps there's an incident that, you know, ends up taking him to the local police station. Maybe there's a cop there who's been transferred from Goa. He would look across the table at Vijay Salgaonkar and say, one minute, इसको तो मैंने कहीं देखा है. ऐसा अगर कुछ होता ना, मतलब I need to get in touch with Aamil Kian Khan in case they are making Drishyam 14, जो बनने वाली है. घबराइए नहीं, बनने वाली है.

0: स्पीकर
1: लिसनर्स चॉइस
2: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
3: हेलो यूके वालों, बिग बॉस इज बैक और इस बार घर वालों को मिलेगा एक नहीं टू चांस बिग बॉस ओनली ऑन कलर्स।
4: वॉच बिग बॉस 20 टुनाइट एट 9:30 PM ओनली ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार।
1: राइट, हु इज गोना बी माय हीरो ऑफ द आवर? टेल मी हु दिस मिस्ट्री पर्सन इज, हु इज गोना बी द फर्स्ट वन? हियर वी गो।
5: मैंने फोन उठाया तो उन्होंने कहा मैं यश बोल रहा हूं, यश चोपड़ा बोल रहा हूं। He used to talk like that, and बहुत प्यार से। I used to stood up. I said, जी जी। He said, yes, yes, मैं यश चोपड़ा बोल रहा हूँ और मेरा बेटा फिल्म बना रहा है, आदि आपसे मिलने आएगा, भेजूँ हैदराबाद, भेजूँ आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा पैकअप ही है यश जी, मैं आ रही हूँ, मैं परसों की फ्लाइट से वापस आ रही हूँ, मैं आऊँगी आपके पास।
1: 07925-700-272, any idea whatsoever, shall I play it again for you?
5: मैंने फोन उठाया तो उन्होंने कहा मैं यश बोल रहा हूँ, यश चोपड़ा बोल रहा हूँ। He used to talk like that, and बहुत प्यार से। I used to stood up. I said, जी जी। He said, yes, yes, मैं यश चोपड़ा बोल रहा हूँ और मेरा बेटा फिल्म बना रहा है, आदि आपसे मिलने आएगा, भेजूँ हैदराबाद, भेजूँ आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा पैकअप ही है यश जी, मैं आ रही हूँ, मैं परसों की फ्लाइट से वापस आ रही हूँ, मैं आऊंगी आपके पास।
1: Who is our mystery person?
6: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk.

0: Celebrate autumn at Hobbledown Heath, London's most magical pumpkin patch. Hunt for your perfect pumpkin, toast marshmallows, play seasonal games, enjoy entertainment, fairground rides and capture memories at new photo points. There's a perfect pumpkin patch experience for everyone. A classic pumpkin day or illuminated pumpkin nights, even special dog-friendly dates or a great value bundle ticket for access to the park and pumpkin patch. For information and tickets, visit hobbledown.com/Hounslow.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड